0: visit starters.co.uk
1: or call 0208-900-2323.
2: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
2: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
2: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
4: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना साडा सोना,
3: वसीम ज्वेलर्स।
4: माय मम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s। दाल मखनी, बटर चिकन, दीज हैव बीन माय फैमिलीज फेवरेट डिशेस, यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations। खानम घी, द लेगेसी लिव्स ऑन।
5: खानम घी, अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल, अवेलेबल एट ऑल मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन स्टोर्स। द सनराइज ब्रेकफास्ट शो ब्रॉट टू यू बाय वेल बेबी एंड वेल किड, आइडियल विटामिंस फॉर चिल्ड्रन from Vitabiotics, the UK's number one

0: 2012 की फिल्म विकी डोनर का ये गाना आयुष्मान खुराना की आवाज में, पानी द रंग. A film starring Ayushman Khurana and Yami Gautam. You can actually see how beautifully Yami Gautam has blossomed as an actress when you compare Vicky Donor to Huck. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूसडे की सुबह 28 जुलाई की सुबह शबनम साही के साथ. गुड मॉर्निंग.
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय उत्सव प्लस.
2: आई लव यू डॉक्टर नोइनी
3: कांगडो. ये तुम्हारा बचपना है, प्यार नहीं. उम्र देखिए तुम, देखो हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता.
2: तब तक लोगों की परवाह करती रहोगे, तब तक अपने दिल की आवाज से दूर भागते रहोगे.
0: Watch Sehrab, a heartfelt musical romance every day at 6 p.m. only on Utsav Plus. The hit of the hour with Jamin Foods, delicious, convenient pot meals like upma, poha, dal bhat, sabudana khichdi, ready in a matter of minutes. Available at stores near you. Jamin, the ethnic taste of India. Anil in Wolverhampton, Suprita in Amersham, Amreen in Wimbledon, Suki Sandhu in Bristol, Jasmine in Hayes, thank you so much. Vipin Aneja, A.R. Rahman, Irshad Kamil ke bol taken from Main Vapas Aunga, Tere Paas Main. Yes, we do have a competition on the show. Your chance to win tickets to Sonu Nigam Live on Sunday the 23rd of August at the OVO Arena in Wembley here in London. अगर तो आप जीतना चाहते हैं अपने फेवरेट स्टेशन पर, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. कीप इट लॉक्ड टू सनराइज. 07925 702 72 द स्टूडियो व्हाट्सएप नंबर. गुड मॉर्निंग.

0: sunny day essentials at lidl.co.uk/save more. So you can load up the icebox, fire up the barbie and go all out al fresco. Lidl, more to value. Prices check 20th of the 7th. Tesco also sell other products. See online for more details.
1: Sheffield Mellor CIC in association with Eventmaster International presents DesiFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8pm for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.
2: Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration, and expertise. Where you can laze in luxury accommodation. And kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. My mom started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhni, butter chicken, these have been my family's favorite dishes, using Khanam Ghee for 3 generations. Khanam Ghee, the legacy lives on.
1: Khanam Ghee, a brand from SOP International, available at all major supermarkets and your trusted local Asian stores.
4: Shabnam Sahi on Sunrise with Gullak on Sony TV. Love, laughter and a little family chaos. This is a show that you will instantly relate to. Watch Gullak, starting this Sunday, 9pm on Sony TV.
5: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
6: Good morning, it's 10:22. Aap sun rahe Sunrise Radio, Shabnam Sahi ke saath. Now, I have a very important message. Kya aap jante hain ki childhood vaccinations bachchon ko best protection dete hain? England mein har saal 5,000 से भी ज्यादा बच्चों की मौत होती है. बचपन के इन्फेक्शंस, सीरियस बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर कभी कभी लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी की वजह बन सकते हैं. बचपन के इन्फेक्शन जैसे मीजल्स या वूपिंग कॉफ समाज में बहुत आसानी से फैलते हैं. अगर आपका बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है. याद रखिए, NHS पर दिए गए सभी चाइल्डहुड वैक्सीन्स दुनिया में मिलियंस ऑफ बच्चों ने लगवाए हैं, जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड एक्सेलेंट है. प्लीज रिमेम्बर दिस, अपने बच्चे को बेस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए उनके टीके, उनके वैक्सीनेशंस टाइम पर लगवाना बहुत जरूरी है. अगर आपके बच्चे ने कोई वैक्सीनेशन मिस किया है, आज ही अपने GP को कैच अप के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए. क्या आपके बच्चे के वैक्सीन्स अप टू डेट हैं? उनके रेड बुक को चेक कीजिए और अपने GP प्रैक्टिस से संपर्क कीजिए. फॉर इन्फॉर्मेशन nhs.uk/childhoodvaccinations पर जाइए.
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
7: ये है संगम. पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम.
6: A house full of chaos, a girl full of dreams. Watch a heartwarming story of love, family and emotions. Watch Bareilly Ki Bachchan Monday to Friday at 8pm on Colors TV. Amreen, you're absolutely hilarious. To keep your home in Wimbledon spick and span, you did not trust a dustpan and brush, or indeed Henry Hoover. You had to get yourself a trusted jhadu, right? Which you did. I had to ask you the same question that your son-in-law did. Did you get it all the way from Karachi? No, you didn't. You got it from the next best place, Tooting. Tooting ke baare mein vaise humne bhi bahut suna hai. Apparently, some of the best Asian restaurants.

0: कविता ऑन सनराइज विद गुल्लक ऑन सोनी टीवी. एक चम्मच थी लव लाफ्टर एंड अ लिटिल फैमिली केओस. दिस इज अ शो दैट यू विल इंस्टेंटली रिलेट टू. वॉच गुल्लक स्टार्टिंग दिस संडे 9 PM ऑन सोनी टीवी.
1: माय मॉम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s. दाल मखनी, बटर चिकन, दीज हैव बीन माय फैमिलीज फेवरेट डिशेस यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations. खानम घी, द लेगेसी लिव्स ऑन.
2: खानम घी, अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल, अवेलेबल एट ऑल मेजर सुपरमार्केट्स and your trusted local Asian stores.
3: South All Travel invites you to Dubai, where world-class hospitality, stunning resorts and iconic attractions await. From beaches to desert adventures, there's something for everyone, all at unbeatable prices. Call 0208 574 8410. South All Travel, at all protected.
4: South All Travel can take you there.
2: Treat your customers and your team to the rich, authentic taste of Royal Chai, their favorite chai anytime. Get Royal Chai vending machines free. Yes, absolutely free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations and community spaces. Email info@royalchaivending.com. Royal Chai, brewed for business. T's and C's apply.

0: The hit of the hour with Jamin Foods. Delicious, convenient pot meals like upma, poha, dal bhat, sabudana khichdi. Ready in a matter of minutes. Available at stores near you. Jamin, the ethnic taste of India.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.